हम यहां पर भी और आगे भी आखिरत का नतो निजाम ही, और हम तो उसके बारे में कोई अपना उस तरीके से यकीन से, तो चार चीजें यकीन तो हमें नबी पाक सल्लम के सदके तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन हम किस मुंह से जो उनको क्या बताएंगे कि हम क्या थे, हम क्या करते रहे हैं। इसमें कोई इतना बड़ा फलसफा नहीं है, ये सारी चीजें हमारे अपने अंदर मौजूद हैं। बस इन बातों पर अमल करना, अपने आप को ठीक करना। हर आदमी कोशिश करे कि मैंने ऐड करना है, कि मैंने ये चीज जो मेरे अंदर गलत है तो खत्म करना है। और ये यूनिटी सिर्फ कोई दुनिया में की यूनिटी नहीं है, हमारे घरों की यूनिटी देख लें, हमारे एक दूसरे बहन भाइयों की यूनिटी देख लें, क्या है? कुछ भी नहीं है। बस ये चीजें, ये बीमारियां, ये जो है कैंसर की तरह पूरे सरायत कर चुकी है पूरी कम्युनिटी के अंदर। लिहाजा मैं दुआ करूँ अल्लाह पाक हमें राय दायद नसीब फरमाए, और हमें जो है वो बाबा कौम के जो है वो फरमुदात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक उनको जन्नत अल-फ़िरदौस में आला अफजल मकाम अता फरमाए, और जो है वो हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। असल में ये मज़मून जो है ये बहुत लंबा है, अभी तो बात नहीं हो सकी। ये जो इनके जो तीन चीज़ें, कभी फिर भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इन बातों को जो है वो समझा जाए, और सिर्फ बातों को समझा ना जाए बल्कि हमने जो है वो अब डिसिप्लिन के बारे में तो सुनते भी रहते हैं। हर अदारे का एक अपना डिसिप्लिन है, अपनी वर्दी है, अपना तरीका है, अपना एक सिलसिला है। दुनिया में चले जाएं, वहाँ आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते। इस बिल्कुल इसी तरीके से जब आप इस्लाम में दाखिल होते हैं तो वहाँ पर एक डिसिप्लिन नज़्म ज़ाब्ता आ जाता है, वहाँ पर भी अपनी मर्जी नहीं चलती। जिस तरीके से किसी जहाँ पर दफ्तर में जाते हैं, बाहर आप जितनी मर्जी जो मर्जी करें वो कर सकते हैं शायद, लेकिन वहाँ पर जाकर ये चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि आप उस डिसिप्लिन के अंदर आ जाइए। लिहाजा जब कोई भी कौम नज़्म ज़ब्त डिसिप्लिन पर अमल नहीं करती वो तबाह बर्बाद हो जाती है। तो बहरहाल चलो ये बात हो गई, हमने अलामा साहब की जो है वो बात, मैं ये कई बार ये कहा है कि तसव्वुफ जो है वह किसी भी ज़बान में हो बस उसका पैगाम एक है। अभी देख लें ये पैगाम भी, तो अलामा साहब जो है वो एक शेर हम अलामा साहब पेश कर, टाइम हमारा बिल्कुल नज़दीक है। अलाम साहब का हम खिताब बेजवाना ने इस्लाम जो है वो पढ़ रहे थे कि कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका है तू एक टूटा हुआ तारा। तो ये भी हमें थोड़ा पढ़ा था, हम इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। हम सब फरमाते हैं, तुझे इस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, तुझे उस कौम ने पाला आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाऊं मैं ताजे सरे दारा, कुचल डाला था जिसने पाऊं मैं ताजे सरे दारा, तमदन नाफरी खला के आईने जहांदारी, तमदन नाफरी खला के आईने जहांदारी, वो सराए अरब यानी शुतर बानू का गहवारा, वो सहराए अरब यानी शुतर बानू का गहवारा, समाल फकर फखरी का रहा शान इमारत में, समाल फकर फखरी का रहा शान इमारत में, बेआबो रंग खालो खत चहाजत चहादत रुए जेबारा, बेआबो रंग खालो खत चहाजत रुए जेबारा। बड़ा जी मैंने ये तेज से जो है, चूंकि वक्त बड़ा बिल्कुल नज़दीक है, तो हम जो है लम्हा साहब के मैं एक दो शेर मैंने आपके सामने पेश किए गए, तो इसके नज़म के बारे में तो हम उस दिन काफ़ी इस पर बात हुई है कि ये जो है वो जवान से मुखातम है, जवान एक रीढ़ की हड्डी हैं किसी भी कौम की। जवान जो हैं वो अगर ये उस रास्ते पर आ जाएं, बस ये समझें कि बहुत बड़ी जो गाड़ी है उसके इसको इंजन समझ लें, या इंजन से भी ज़्यादा इसके अंदर कोई अगर ऐसी चीज़ जिसके बगैर बिल्कुल ही गाड़ी नहीं चल सकती, वो ये जवान है। और अहमद साहब ये कहते हैं कि इस जवान को मैं ठीक कर लूँ, अगर ये जो इसका किबला दुरुस्त हो जाए तो फिर बाकी लोग जो है वो चलो
किसी न किसी लिहाज से जो है वो इसके साथ जो है वो चल पड़ेंगे। इसके अंदर

0: बड़ी मेहनत है, तगोदो है, इसके अंदर बड़ा जज्बा और जोश है, इसके इसके अंदर जो है बड़ी कुव्वत है, बड़ी ताकत है, इसलिए जो है इसको जो है वो जगाना चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये तन आसान हो गया है, ये जो है वो इसकी मिसाल कबूतर की भी कभी की उन्होंने दी है कि शाहीन का जो है तेरे अंदर जिस्म है, तू तो बिल्कुल तने नाजुक हो चुका है, क्या ये तेरी हालत ये क्यों है। तो बहरहाल इस उसको जो है वो फिर ये चीज़ें उसको तारीख जो है वो उसको दिखा रहे हैं, उसको तारीख के बारे में बतला रहे हैं कि वो क्या गर्दूं था जिसका है तू एक टूटा हुआ तारा। ऐ मुसलमान, ऐ जवान, कभी तूने सोचा है, कभी गौर फिक्र किया है कि तू एक आम आदमी नहीं है, बल्कि तू ये समझ कि वो सितारों वाला जो आसमान है उस पर जो आपको सितारे नजर आते हैं, तेरा मकाम वहां पर, तू उन सितारों में से एक सितारा था। आज वो सितारे कहाँ है और तू टूट कर क्या हुआ, वो सितारों से तू टूट गया, वो नीचे जमीन पर आ गया, अब तू अंधेरे में है, तेरी कोई रोशनी नहीं है। इसका मतलब यह है कि ए मुसलमान, ए जवान, तेरे जो अबाओ अजदाद थे वो बहुत बड़े शान शौकत वाले थे, बड़े जो है वो दुनिया के मुकदम लोग थे, बड़े आला लोग थे, वो दुनिया को रास्ता दिखाने वाले थे, दुनिया उनके पीछे चल रही थी, और क्या हुआ कि तू उस रास्ते से भटक गया, तू उस जो है वो काफले से जो है वो जुदा हो गया, अब तू अकेला है और यहां पर जो है तुझे पूछने वाला कोई नहीं है। उसको वो कहते हैं कि तू जो है वो ख्वाबे गफसत में चला गया, तू जो है सुस्त रवि में चला गया, वो तो रात को जागने वाले थे, वो तो सुबह सादक उठने वाले थे, वो तो जो है वो नमाज तहज्जुद और बाकी जो है वो नमाजें जो है वो सारगाही उनके अंदर मौजूद थी, लेकिन तेरे अंदर ये चीजें खत्म हो गई। तो क्या उसका रिजल्ट क्या हुआ कि बस तेरी इज्जत, तेरी हर चीज खत्म हो गई, और तेरी वजह से क्या हुआ, पूरी कौम जो है वो सो गई। वो उसको जगाना चाहते हैं, उसको बार बार जो है कहते हैं कि तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, भाई तू तो उस कौम में पला है, तुझे तुझे तो उस कौम की तरबियत उस कौम ने तुझे दी है। मैं देखा तालीम तरबियत वही नहीं है, कलमा मैंने पहले पढ़ा है, बाबा कौम ने फरमाया ईमान, क्या यही कलमा हर आदमी नहीं पढ़ता था, क्या बाबा कौम ने भी ये कलमा नहीं पढ़ा, इससे पहले जो मुसलमान थे वही ये कलमा पढ़ते थे, यकीन कुरान बिल्कुल वही पढ़ते थे, नबी पास ने तालीमात बिल्कुल जो आज है वही थी वहां पर भी, बल्कि उन्होंने अमल करके उनके ज्यादा हमारे लिए बहुत चीजें आसान किए हैं, हमें तो और आसानियां हुई हैं, बेशुमार चीजें हमने और सीखी है, उनके लिए तो बड़ी मुश्किलात थी, लेकिन क्या है कि आज हमने क्या उनकी चीजों से सीखकर कुछ आगे हासिल किया है? नहीं। तो वो बताना ये चाहते हैं कि वो जो तुम्हारे अबाओ अजदाद थे जिनकी वो तरबियत थी, अब उनकी तरबियत का ये असर था कि वो बड़े बड़े बादशाहों के जो ताज थे उसकी मिसाल एक की दी है कि कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा, यानी बहुत बड़ा जो ताज जो वो लोग सर पर रखते थे, एक दिन क्या हुआ कि बस वो जो जब वो फतह हुआ तो वो ताज उनके कब्जे में आ गया, ये एक तमसील दी गई है, उसको जज्बा जो है बढ़ाने की बात की गई है। लेकिन आज हम देखें, आज हमारा ताज कहाँ है, आज हमारा वो ताज, हमारा वो तख्त, हमारे वो चीजें किधर गई? भाई हमने, हम तो दुनिया को छोड़े, दुनिया से लड़ाई करना जगना छोड़े, हम आज आज हमने जगना अपने आप से है, हमने अपने आप से सवाल पूछते हैं, हमने अपने बच्चों से पूछना है, जवानों से पूछना है, लेकिन आज क्या हमारे लिए है। और आगे जो है वो साथ चूंकि अगले शेर फरमाते हैं कि तमद्दा नाफरी खलाके आईने जहांदारी, और आगे उसकी वजात मजीद करते कहते वो सहराए अरब यानी शतरबानों का गवारा, वो अरब का जो इलाका, ये जो अजाज का इलाका है, ये रेगिस्तान, ये थर, रेत ही रेत हर तरफ, और वो लोग जो थे वो ऊंट चराने वाले, ऊंटों की तरबियत गाह उनने जो है बनाई हुई थी, वो ऊंट ऊंट बानी करने वाले, ऊंटों की गला बानी करने वाले, उनका मुकाम देख ले क्या हुआ, ये मुसलमान को बता रहे हैं। तो बड़ा चूंकि हमारा टाइम, चूंकि बात को हमने जरूर मुकम्मल करना है, तो टाइम हमारा जो है मुकम्मल है, लेकिन इसके दौरान अगर इधर कोई बात होगी हो तो मैं तो माजर चाहता हूँ, हमारे साथ रहिए प्रोग्राम जनाब ये प्याम सुखन जो है, तो मिलते हैं ब्रेक के दूसरे हिस्से में।
1: 96. My name is Shireen.
2: My name is Abdul Rahman.
3: My name is Sai Mudassir.
4: This is Rahul.
5: My name is Rizwan Ishraq.
6: My name is Ashan.
7: My name is Azan Mudassir.
8: This is Ariba and you are listening to Link FM.
9: You are listening to Link FM 96.7.
2: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
3: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कांटेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
4: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद कैटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल कैटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद कैटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब
5: And the winner is
6: Your business being heard on the radio.
10: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
11: Sheffield's very own community radio station.
12: Link FM.
13: My name is Shireen.
14: My name is Abed Rahman.
15: My name is Saeed Mudassir.
16: This is Rahul.
17: My name is Rizwan Ishraq.
18: My name is Ashan.
19: My name is Azan Mudassir.
20: This is Ariba and you are listening to Link FM.
11: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
12: Link FM.

0: बंदा नची दी तरफों और तमाम साढ़े लिंक ऑफ रेडियो की तरफों तुसा सारे मुसलमान जेहड़े भैनों भ्राओ सारे की ईद मिलाद नबी मुबारक। अल्लाह पाक जेहड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इश्क विच असां की टुरने तौफीक अता फरमाया। अल्लाह ने वाला जी इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होसी। मास्टर राग जी मेरी इजाजत दियो। खुदा हाफिज फी अमान अल्लाह जी आमीन।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं नईम अजारवी और तुसा सुन रहे हो लिंक एफएम।
2: Lizzie Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchase of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114-308-2727 or visit us online, lizziesolicitors.co.uk. Nazir Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराए पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0333-00571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
4: Want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
0: परेशान खलते हुए जी
5: अंकल, मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है, कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं?
0: ये तो कोई फिक्र वाली गल नहीं, ए साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना, ए एमओटी वाले वो हर किस्म ने गड़ियां नहीं एमओटी करने, भावे कार वे या वैन, रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने, खुश अखलाक शख्सियत ते लाजवाब सर्विस।
5: ए ए एमओटी वाले है किधर?
6: ए ए एमओटी क्ले स्ट्रीट अटकलिफ S92PE। अपॉइंटमेंट नहीं, कोई जरूरत नहीं, अच्छो एमओटी गड्डी नहीं करो ते मौजा करो। फोन नंबर 0786-786-2585।
7: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor based at Attercliffe Pharmacy Direct Sheffield. For just £40, don't delay, call 07456-848-368. That's 07456-848-368. Or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress free.
8: $55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
9: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm 96.7.
10: 96.7 Link FM.
11: You are listening to Link FM.

जब सपनों में आवे तू जाना, मैं घबरा के उठ जानी हूं। की होया हुन की होया सी, ये सोच सोच मर जानी।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बा एतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
17: Hi, my name is Safa.
18: And my name is Zainab.
19: You are listening to Link FM 96.7 FM.

0: You are listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tum sun rahe ho Link FM.
2: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, busier solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Bellhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. Nazir Solicitors is trading style of affinity, 7 law solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups

वेलकम बैक का समय क्रम प्रोग्राम में ब्रेक थी और ब्रेक बड़ी जरूरी है क्योंकि रेडियो स्टेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ब्रेक को प्ले करना. कमर्शियल ब्रेक होती हैं जो रेडियो की किस्म की जान है क्योंकि रेडियो चलता है उनके जरिए है. तो अब चलते हैं अगले कलाम की तरफ. ये कलाम जो है वो थोड़ा सा लंबा होगा तो इंशाल्लाह इस कलाम के बाद आपसे मुलाकात होगी और कोशिश करूंगा कि इसके बाद एक और कलाम आपको साथ ही सुनाया जाए.

खुश आमदेद कहते हैं एक बार फिर। प्रोग्राम है कवाली शो और मैं हूं फैसल याकूब सुल्तानी, और खूबसूरत कवाली का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ कलाम आप सुन रहे हैं और अब चलते हैं अगले कलाम की तरफ।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

0: listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज़ फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5000 से ज़ायद अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई है और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राबता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें nhs.uk/childhoodvaccinations।
0: The future is already here. We play your favorite music every day. 96.7
2: Link FM.

0: You're listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tum sun rahe ho Link FM.
2: Mazeer Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchases of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114 308 2727 or visit us online, naseersolicitors.co.uk. Nazir Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी मिनी कैब प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं 0330571009 पर कॉल करें क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
5: तुसा क्यों परेशान खलते हुए हो जी
6: अंकल मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं
5: ये तो कोई फिक्र वाली गल है नहीं ए साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना ए एमओटी वाले वो हर किस्म ने गाड़ियां नहीं एमओटी करने कोई कार वे या वैन रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने खुश अखलाक शख्सियत लाजवाब सर्विस
6: ए एमओटी वाले हैं किधर
5: ए एमओटी प्ले

0: This is Ahmad Hussein and you're listening to Link FM.
1: My name is Shireen.
2: My name is Abdul Rahman.
3: My name is Sai Mudassir.
4: This is Rahul.
5: My name is Rizwan Ishraq.
6: My name is Ashan.
7: My name is Azan Mudassir.
8: This is Ariba and you are listening to Link FM.
9: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
10: Link FM.
9: Link FM, Sheffield.
10: Link FM.
11: तुक हिरसो हवस की छोड़ मियां मत देश बदेश फिरे मारा कज़ाक अजल का लूटे है दिन रात बजा कर नक्कारा क्या बदिया भैंसा बैल शुतर क्या गूनी पल्ला सरबारा क्या गेहूं चावल मोट मटर क्या आग धुआं और अंगारा सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा।

0: creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: सुनिए सुनिए सुनिए, पार्ल बेकर ने शेफील्ड में धूम मचा दी, यानी रंगारंग मिठाइयों की दुकान सजा दी। गुलाब जामुन, लड्डू, रसमलाई, फलूदा, हलवा, पूरी,
2: समोसा, चाट, नमक पारे, जलेबी, गाजर हलवा, हर किस्म के केक और मिठाई जो सबको पसंद आई।
1: लजीज चिकन पेस्ट्री, लैम पेस्ट्री, सैंडविच, चिकन पनीनी, दही बल्ले और किबाब, सब कुछ ही लाजवाब। पार्ल बेकर, 640 Stanyford Road, शेफील्ड, S94LP, टेलीफोन 0114296092। पार्ल बेकर।
3: Getting married or know someone who is? Make your big day unforgettable with Diamond Wedding Services. From breathtaking floral decor to elegant stages, centerpieces and stunning walkways, we design every detail to perfection. However you imagine your dream wedding, our team can bring it to life. So relax, celebrate and let Diamond Wedding Services handle the magic. Call 077-680-47693 and follow us on Instagram and TikTok at Diamond Wedding Services. Your dream, beautifully designed.
4: Listening to Link FM,
5: Sheffield's very own community radio station.
6: Link FM.
7: अस्सलाम वालेकुम जी, आप सुन रहे हैं लिंक एफएम 96.7। मैं हूं इफ्तिखार ठाकुर और आपके साथ सफर साथ साथ करता रहूंगा।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Saim Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station,
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Saim Mudassir.
5: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
8: Across Sheffield on 96.7, around the world at linkfm.org. This is your community station, Link FM.
17: चहचहाती हुई चिड़ियों ने कहा है क्या क्या? गौर से सुनना जो कोयल ने लगाई है सदा. गुनगुनाती हुई बागों में जो चलती है हवा. सब ने क्या क्या है कहा, हमको बताती है सदा. बारिश अबरे करम दर पे नबी के हरदम. बारिश अबरे करम दर पे नबी के हरदम. अल्लाह अल्लाह मदीने में वो रिम झिम रिम झिम, रिम झिम.

दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता। आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ, लिंक एफएम शेफील्ड।

0: listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tum sun rahe ho Link FM.
2: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, busier solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Billouts Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. Nazir Solicitors is trading style of affinity, 7 law solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराए पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक रशीद।
1: मैं और रंजीत चौधरी।
2: मैं असलम भुट्टा।
3: मैं जी हुसैन कपूर शफील से।
4: मेरा नाम इशफाक हुसैन क्यानी है।
5: मेरा नाम अहमद अफ्तर है।
6: मैं अरशद खान शफील से हूं।
7: मेरा नाम अंजुम अफ्ताद है।
8: मेरा नाम इमरान है। 96.7

0: हाँ जी अब तो कल्ले कल्ले चावा चल रही
1: है वही परदेसी कौन जी बड़ा टाइम टाइम करी फिरने आजकल तो तू बिल्कुल ही टाइम नहीं दे रहा है
2: मितफानों की लगदा तू सी कल्ले चार और सब
1: बहुत अच्छे हैं लगदा तेरी भी चाह किधर सही जगह तो ढूंढ गई है तो इंट्रोडक्शन
2: लाल साहब मैंने अपनी भाभी ना है उस सॉरी फ्लो से निकल गया होने वाली भाभी
1: होने वाली भाभी कैसी है ठीक है तो सुखा सुखा इंट्रोडक्शन कोई मिठाई नहीं
2: मैं गाड़ी में भूल गया हूँ दो मिनट आप गपशप लगाए मैं हूँ लगा
1: और

कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक।

0: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
1: अस्सलाम वालेकुम जी, आप सुन रहे हैं लिंक एफएम 96.7। मैं हूं इफ्तिखार ठाकुर और आपके साथ सफ़र साथ साथ करता रहूंगा।

0: 3.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।

दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता। आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ, लिंक एफएम शेफील्ड।

0: You're listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tum sun rahe ho Link FM.
2: Mazeer Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchases of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114 308 2727 or visit us online, naseersolicitors.co.uk. Nazeer Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी मिनी कैब प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं 0330571009 पर कॉल करें क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
5: परेशान खलते हुए जी
6: अंकल मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं
5: ये तो कोई फिक्र वाली गल नहीं ऐ साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना ए एमओटी वाले वो हर किस्म ने गड़ियां नहीं एमओटी करने भावे कार वे या वैन ते रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने खुश अखलाक शख्सियत ते लाजवाब सर्विस
6: ए एमओटी वाले हैं किधर
5: ए एमओटी प्ले

0: मैं हूं अली अब्बास और आप सुन रहे हैं लिंक FM 96.7 FM.
1: Today, tomorrow, every day, Sheffield's Link FM.

1818. इसके अलावा व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर लीजिए 07939849339. तो चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सुनते हैं नयरा नूर जी की आवाज में बहजाद लखनवी जी की ये गजल.

आज गम है तो क्या वो दिन भी ज़रूर आएगा। जी हाँ सामईन, उम्मीद तो रखनी चाहिए, उम्मीद को दामन कभी भी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं अब एक और गज़ल। आवाज़ है मेहंदी हसन जी की और ये गज़ल इन्होंने गाई थी फिल्म सजा के लिए।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your Business Being Heard on the Radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

सिर्फ हुसैन वालों का ही नहीं, किसी का भी भरोसा नहीं माजरत के साथ। तो चलिए अगले गाने की तरफ चलते हैं। आवाज़ है मेहदी हसन जी की और फिल्म का नाम है दाग।

इतनी मोहब्बत कौन करेगा किस दिल में होगी, बशीर अहमद जी गा रहे थे फिल्म दर्शन के लिए। तो चलिए अब एक और गाना सुनते हैं, मलका तरन्नुम नूरजहां जी की आवाज़ है और फिल्म का नाम है पाक दामन।

इस आमीन एक बार फिर ब्रेक के बाद गीतों की महफिल लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं आबरू फिल्म के लिए मलका।

सामीन, उम्मीद करती हूँ आपको ये गीत पसंद आया होगा। तो चलिए अगला गाना भी मलका तरन्नम नूरजहां जी की आवाज़ में, फिल्म का नाम है चांद और सूरज।

जी सामीन, अब मेरे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ जाता है। ये मेरे प्रोग्राम का आखिरी गीत होगा, इसको ज़रूर सुनकर जाइएगा। तो अगले हफ्ते फिर यहाँ पर मुलाकात होगी, 2 बजे से लेके 4 बजे तक मेरा ये प्रोग्राम होता है मंगल के दिन। साथ देना मत भूलिएगा, और आज भी जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है उन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और अपना और हमसायों का ख्याल रखिएगा, और ये गीत ज़रूर सुनकर जाइएगा। और मेरी तरफ़ से अब खुदा हाफिज़।

और वालेकुम अस्सलाम भी कह रहे हैं कलीम, जीते रहो मेरे भाई। सो ओनली वन मैसेज इन 3 मिनट्स, सो दिस इज व्हाट आई वांट वन मैसेज एवरी 3 मिनट्स।

Join. How are you? You cannot WhatsApp me because I don't want you to WhatsApp if you are driving. Just give me a missed call. Just give me a missed call on WhatsApp number. Thank you, Jahangir. Thank you for your missed call. I appreciate it. ये होती है भाइयों की मोहब्बत। नहीं कलीम भाई, आपसे एक ही सलाम चाहिए भाई, एक सलाम, एक बंदा एक सलाम दे। आपने तो सलाम ऐसे फेंके हैं, ऐसे मारे हैं कि लग रहा है कि कोई मुंह के ऊपर चांटे मार रहे हैं यार। ऐसे भी नहीं करें ना आप।

So let's start the show with a beautiful track. And before me, you are listening to Shehnaz Bano. Mangiya dawama yaar mila. और समटाइम्स ये दुआएं दुआएं ही रह जाती है ना, लेकिन अपने रब से मांगना नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी चीज़ चाहिए उसको मांगते रह करें।

सिर्फ सोचना ये है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल. इवन द वर्ड इम्पॉसिबल क्या कहता है, आई एम पॉसिबल. इन माय डिक्शनरी देयर इज नो वर्ड इम्पॉसिबल. इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, यू वांट समथिंग, यू कैन हैव इट. यू जस्ट हैव टू कीप योर नियत साफ, क्लीन नियत. Ask Allah subhanahu wa ta'ala to help, and inshallah Allah will help.

We are live on 96.7 FM's frequency. This is Link FM, 96.7 FM. Live on DAB. And live on 96.7 FM's frequency. Ke lawa, hum apni app ke upar bhi live hai 967. Link FM 967. और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि आज वी आर लाइव ऑन फेसबुक आल्सो सो लिंक एफएम यूके

0: in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
1: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
2: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब
3: And the winner is
4: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
6: Sheffield's very own community radio station.
7: Link FM.
8: My name is Shireen.
9: My name is Abed Rahman.
10: My name is Saeed Mudassir.
11: This is Rahul.
12: My name is Rizwan Ishraq.
13: My name is Asham.
14: My name is Azan Mudassir.
15: This is Ariba and you are listening to Link FM.
6: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
7: Link FM.

0: Come back after the commercial break. FM 96.7 FM, and this is Drive Time Show. By court. Also joined by Pakistan Muslim Center's chairman Irfan. Hussein has also joined. He's a volunteer for court. And if you have any question, 011-4261-8181, and you can WhatsApp 0793-984-9339 if you have any question. Like we mentioned you before, there is an event taking place. And it's a court hospital fundraising dinner. Ji, dinner mean roti shoti. Badi nice roti shoti. Hai. Dubkiyan laga ke salan mein aap dubki laga ke kut kut ke khayenge. Fikri na karein aap. Lekin phir uske liye aapko yahan aana zaruri hai. This event is taking place on Sunday 28th of June. 28 June. 28 June Sunday ka din hai. Aur yakinan संडे को मैं भी फारिग होता हूँ, आप भी फारिग होते हैं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अपने घर से बच्चों को भी आप ले के आएँ। 5 PM पे ये शुरू होगा, जो न्यूयॉर्क स्टेडियम है रोद्रम में, सबको पता है। अगर आपको नहीं पता तो आई विल लेटर ऑन अपलोड दिस पोस्टर ऑन आवर सोशल मीडिया, लिंक एफएम का जो सोशल मीडिया, आप उस पर भी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक इसको आपने टिकट वगैरह नहीं लिया तो दोबारा हम वेलकम करते हैं इफ्तिखार साहब को। और ओवेस का सोना मुखड़ा मुझे नज़र नहीं आ रहा। सो वेलकम टू ड्राइव टाइम ओवेस, हाउ आर यू?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, गुड, बिजी

हमारा और आपका साथ रहेगा शाम के 6 बजे तक, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सिलसिला अच्छा लगता होगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में भी कुछ बहुत अच्छा, बहुत नाइस ट्रैक्स आपके लिए लगाएंगे, उम्मीद करेंगे आप पसंद करेंगे। साथ देते रहिएगा, हम हैं आपके साथ और आप हमारे साथ।

और वेरी थैंकफुल टू साजिदा परवीन फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक. तो साथ देते रहिएगा हमारा 6 बजे तक और उम्मीद करते हैं कि आप आज का प्रोग्राम भी आपने एंजॉय किया होगा. आप देखें कि लिंक एफएम में हमारी आपकी आवाज़ है उसकी बेस पे हमें ये चीज़ें करनी पड़ती हैं. एक इवेंट हो रहा है कोर्ट हॉस्पिटल की फंड रेजिंग के हिसाब से, तो हमने सोचा क्यों ना आपसे ये इंफॉर्मेशन शेयर की जाए ताकि आप भी इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर सकें, हेल्प कर सकें. और इफ़ यू नीड मोर डिटेल्स यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन 0793984-9339. वी कैन ऑल्सो गिव यू सम मोर डिटेल्स. रेगुलर हैं वो सारे ठंड प्रोग्राम करके निकल लिए पतली गली से हमें उन्हें, लेकिन वो भाग्यशाली सारे. मुझे भी आप लोगों की जो है ना इस तरह की आदत हो गई है अब, तो मैं कहता हूँ कि भाग गए तो भाग गए यार, ठीक है. अब मैं भागने की तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि इस वक्त घड़ी के मुताबिक 5:40 हो चुके हैं, 5:40. तो यस, फिर मैं भी भागने की तैयारी कर लूँ. वैसे मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, भगाने वालों में से हूँ. खुद नहीं भागूंगा,

0: 1009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या द क्लेम टीम UK पर तलाश करें।
1: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
2: परेशान खलते हुए जी
3: अंकल मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं
2: ये तो कोई फिक्र वाली गल नहीं ऐ साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना ए एमओटी वाले वो हर किस्म ने गड़ियां नहीं एमओटी करने भावे कार वे या वैन ते रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने खुश अखलाक शख्सियत ते लाजवाब सर्विस
3: ए एमओटी वाले हैं किधर
2: ए ए

अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों सज्जनों, ते मैं आगे प्रोग्राम करदे प्रदेश विदेश जरा हर मंगल दिन शामी 6 to 8 बजे पेश किया जाना लिंक FM 96.7 लिंकिंग कम्युनिटी थिंकिंग पॉजिटिव। सर स्टूडियो नंबर है 01142618181, व्हाट्सएप नंबर है 07939849339। सब दोस्तों की मैं वेलकम कर रहा हूँ प्रोग्राम परदेश विदेश, जितने भी दोस्त साथ दें सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम अपन लिंक FM में जरूर ज्वाइन करो। इस तो पहले जवाद भाई ने बहुत बहुत शुक्रिया, मिशन तरह जबरदस्त प्रोग्राम उन्होंने बनाया। जितने भी दोस्तों सारा दोस्त सुनने सब दोस्तों से पहले सुनाने सैफर मलुक फिर दोस्तों फरमाइशा वाला उसने

0: सुनिए पार्ल बेकर्स ने शेफील्ड में धूम मचा दी, यानी रंगारंग मिठाइयों की दुकान सजा दी। गुलाब जामुन, लड्डू, रसमलाई, फलूदा, हलवा, पूरी,
1: समोसा, चाट, नमक पारी, जलेबी, गाजर हलवा, हर किस्म की केक और मिठाई जो सबको पसंद आई।

वेलकम बैक जी। ब्रेक तो बाद इसमें प्रोग्राम सुन रही है प्रदेश विदेश लिंक FM 96.7 लिंकिंग कम्युनिटी थिंकिंग पॉजिटिव। सारा स्टूडियो नंबर है 0114261881, व्हाट्सएप नंबर है 0793984939। सब दोस्तों की मैं वेलकम कर रहा प्रोग्राम प्रदेश विदेश। ये तो सुना लिंक FM है, जरूर फोन करो, फरमाइश करो, टाइम गुजरी असी जितने दोस्त साथ दे रहे हैं सब दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। तुम अपन लिंक FM है अज सारे सब तो प्यारे दोस्त जनाब सूफी मुश्ताक साहब उन्हें फोन किया सी और सब पूरी टीम की सलामत करे से स्पेशली सारे दोस्त राजा मुश्ताक साहब कालाडा वाले उन्हें की उन्होंने ग्रहणी उन्होंने एक स्पेशल जनाब फरमाइशिप की है सूफी मुश्ताक की तो बहुत बहुत शुक्रिया। असें खुश रखा जनाब हमेशा ये तो प्यार है जनाब सारे नाल सुनो ये उन्होंने तरफों सब दोस्तों से

उम्मीद है कि सूफी मुश्ताक साहब की पसंद आ रही है। उन्होंने फरमाइश थी ज़बरदस्त थी, इसी कोई शक नहीं। वैसे बहुत कम करी करी तो बैंक ना भरो क्योंकि बंदा मुसाफर है। स्पेशली ये सुनो सूफी साहब इस तरफ ये तो समझते हैं।

उम्मीद है कि दोस्तों की पसंद आया। वैसे स्पेशली सुहेल मुश्ताक साहब की तुम्हारा कम कट करो, मौसम लगी नहीं ना। नेक्स्ट ये सब दोस्तों से सुनो।

0: My name is Shai Mudassir.
1: This is Rahul.
2: My name is Rizwan Ishraq.
3: My name is Ashan.
4: My name is Azan Mudassir.
5: This is Ariba and you are listening to Link FM.
6: You are listening to Link FM 96.7.
7: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
8: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
9: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
10: And the winner is
11: your business being heard on the radio.
12: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
13: Sheffield's very own community radio station.
14: Link FM.
15: My name is Shireen.
16: My name is Abdul Rahman.
0: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
2: My name is Rizwan Ishraq.
3: My name is Ashan.
4: My name is Azan Mudassir.
5: This is Ariba and you are listening to Link FM.
13: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
14: Link FM.
17: अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तुहाड़ा इफ्तिखार ठाकुर पे बोलना ते तुसी सुनने हो पे लिंक FM 96.7. बहुत मजा है सीने.
18: Hello everyone, my name is Leo.
19: My name is Azir Iqbal.
20: This is Dr. Shah Nawaz.
21: This is Counselor Shafiq Mohammed.
22: My name is Ibrahim Hussain.
23: This is Aftab Ahmed.
24: This is Abit Tabassum.
25: I'm Chris Lewis.
26: My name is Javed Rashid.
27: My name is Mohammed Maru.
28: This is Sohail Bamtas. You're listening to Link FM 96.7, Linking Communities.

0: कुछ भी कर लूं,
1: तुम कभी
0: और तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।

0: Keep listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज़ फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5000 से ज़ायद अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई है और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राबता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें nhs.uk/childhoodvaccinations।
2: Your number one for news in Sheffield, Link FM.

दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन दिल से आपके साथ, लिंक एफएम शेफील्ड।

0: की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।
1: यू आर लिसनिंग टू लिंक एफएम 96.7।

दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ, लिंक एफएम शेफील्ड।

0: keep listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज़ फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5000 से ज़ायद अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई है और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राबता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें nhs.uk/childhoodvaccinations।
2: Wherever you go, Link FM is there for you. Download our app, Link FM 967, or simply search Link FM Live on Google. You're listening to Link FM on 96.7 FM, linking communities, thinking positive across South Yorkshire.

0: You're listening to Link FM.
1: जहाँ दिल मिलते हैं, जहाँ बातें बनते हैं, हर राह की मंजिल.
2: जहाँ बातें बनते हैं, वही है लिंक FM. दिल से आपके साथ
3: लिंक FM Sheffield.
4: हर धड़कन की आवाज है लिंक FM. मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक FM.
2: सुबह की रोशनी, शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक FM. दिल से आपके साथ
3: लिंक FM.

0: is Abed Osman.
1: My name is Sai Mudassir.
2: This is Rahul.
3: My name is Rizwan Ishraq.
4: My name is Ashan.
5: My name is Azan Mudassir.
6: This is Ariba and you are listening to Link FM.
7: You are listening to Link FM 96.7.
8: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
9: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
10: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
11: And the winner is
12: Your Business Being Heard on the Radio.
13: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849339.
14: Sheffield's very own community radio station.
15: Link FM.
16: My name is Shireen.
17: My name is Abed Osman.
1: My name is Sai Mudassir.
2: This is Rahul.
3: My name is Rizwan Ishraq.
4: My name is Ashan.
5: My name is Azan Mudassir.
6: This is Ariba and you are listening to Link FM.
14: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
15: Link FM.

0: 96.7 FM, online, on smartphone and tablet. This is Link FM.
1: मौत मेरा साया है जोया, वो मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। जोया, हम गटर में पले हैं, गटर में ही जिएंगे और गटर में ही मरेंगे।

0: You're listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tum sun rahe ho Link FM.
2: Mazeer Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchases of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114-308-2727 or visit us online, naseersolicitors.co.uk. Naseer Solicitors is trading style of affinity, 7 law solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी मिनी कैब प्राइवेट किराए पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं 0333-00571009 पर कॉल करें क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the

0: तड़पता ही रहा है सदा.
1: This is Ahmed Hussain and you're listening to Link FM.
2: My name is Shireen.
3: My name is Abdul Rahman.
4: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahul.
6: My name is Rizwan Ishraq.
7: My name is Ashan.
8: My name is Azan Mudassir.
9: This is Ariba and you are listening to Link FM.
10: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
11: Link FM.
12: अस्सलाम वालेकुम जी, आप सुन रहे हैं लिंक एफएम 96.7. मैं हूं इफ्तिखार ठाकुर और आपके साथ सफ़र साथ साथ करता रहूंगा.

0: Ahmed Osman.
1: My name is Sahin Mudassir.
2: This is Rahul.
3: My name is Rizwan Ishraq.
4: My name is Ashan.
5: My name is Azan Mudassir.
6: This is Ariba and you are listening to Link FM.
7: You are listening to Link FM 96.7.
8: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
9: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning Contact number 07955198814 and 07955198824.
10: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब
11: And the winner is...
12: Your business being heard on the radio.
13: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
14: Sheffield's very own community radio station,
15: Link FM.
3: My name is Shireen.
0: My name is Abed Rahman.
1: My name is Sahin Mudassir.
2: This is Rahul.
3: My name is Rizwan Ishraq.
4: My name is Ashan.
5: My name is Azan Mudassir.
6: This is Ariba and you are listening to Link FM.
14: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
15: Link FM.